वंदे मातरम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना। कुछ ही पलों में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना। श्रोताओं, आइए करते हैं इस सुबह की शुरुआत ईश्वर के स्मरण के साथ और सुनते हैं भक्ति से सराबोर कार्यक्रम भक्ति धारा।

श्रोताओं, प्रीति सगर की आवाज में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आइए बढ़ते हैं अगली भक्ति गीत की ओर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना से भक्ति संगीत से सराबोर कार्यक्रम भक्ति धारा, और अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत तृप्ति शाक्य के स्वर में।

0: मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। तुम्हारा सपना
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: मुझे स्कूल से
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल के स्वर में ये भक्ति गीत, और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है, और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में।

पुण्यात्मा काकभुशुंड के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, मायाजनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण्ण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। और इस कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं मलखान सिंह यादव और साथी, तो आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये लोक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मलकान सिंह यादव और साथियों के स्वर में ही लोकगीत। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम लोकरंजनी अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं

0: आकाशवाणी गुना कुछ ही पलों में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना और अब प्रस्तुत है आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं अब से कुछ ही देर में अर्थात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गांधी स्मृति और 8:30 पर आप सुन सकेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार भड़ेरिया शासकीय पीजी कॉलेज गुना से हरिशंकर शिवहरे की बातचीत।

9 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम 1 फनकार, जो केंद्रित रहेगा गायिका सुरैया पर।

श्रोताओं, 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, और 10:05 पर प्रसारित किया जाएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना।

शाम 6 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व एवं महानता के दो आधार, समय प्रबंधन श्रेष्ठ विचार। साथ ही आनंद लीजिएगा शामे गजल का। शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज की शाम। शाम 7:21 पर सुनिएगा लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। साथ ही 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ग्राम सभा।

श्रोताओं, 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष श्रृंखला। 8:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और रात्रि 9 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी गुना है। कुछ ही पलों में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है।

0: अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन

कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी गुना है और अब प्रस्तुत है सूचनात्मक और जनउपयोगी सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे और साथ ही हम लाए हैं आपके मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का खजाना भी। दोस्तों, चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है। आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आपकी रेडियो दोस्त धारणा भार्गव के साथ और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। दोस्तों, आज आपसे यही कहूंगी कि हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए। जो भी सोचा है उसे पूरा करने के लिए स्वयं को हमेशा तैयार कीजिए।

दोस्तों आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल यह दिन 5 जून को पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए किया जाता है। साथ ही लोगों में पर्यावरण के लिए जागरूकता बनाए रखने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि केवल आज ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सब भी सुरक्षित रह सकेंगे।

दोस्तों, बिजली कंपनी के शिविर आज लगेंगे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों से त्वरित समाधान और सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 5 जून को जिले के विभिन्न वितरण केन्द्रों और जोनों में विद्युत संबंधी सेवाएं आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत ये शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर आरोन विद्युत विभाग के अंतर्गत आरोन के सदर बाजार हनुमान मंदिर के पास में आयोजित होगा। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे नए कनेक्शन के आवेदन, नाम या भार परिवर्तन, अस्थायी कनेक्शन मात्र 5 रूपये में कनेक्शन योजना, स्थायी विच्छेदन के आवेदन और ई केवाईसी व अनापत्ति प्रमाण पत्र का मौके पर निराकरण किया जाएगा।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना से कार्यक्रम सुबह सवेरे। कार्यक्रम जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं या उन्हें सच भी करना चाहते हैं? आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना में प्रवेश लीजिए। तो आज ही विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.kttb.in को ओपन करें और विश्वविद्यालय में प्रवेश लें। क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना, जहां सपने बनते हैं हकीकत।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कुछ हमको
6: क्या
5: कुछ तुमको

श्रोताओं, हरिपुर में लगा निशुल्क नेत्र शिविर। लायंस नेत्र चिकित्सालय गुना द्वारा ग्राम हरिपुर में निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत के सरपंच, सचिव सहित उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी आंखों का परीक्षण करवाया, जिसमें अस्पताल द्वारा 110 मरीजों का परीक्षण कर 12 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किए गए, जिनके ऑपरेशन लायंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा पूर्णतः निःशुल्क किए जाएंगे।

दोस्तों, सीबीएसई 12वीं के लिए पुनर्मूल्यांकन पोर्टल खोला गया। सीबीएसई ने 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रीचेक और पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट 6 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया है। आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रीचेक और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल खोल दिया है। बोर्ड के अनुसार केवल वही स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति प्राप्त की है। इस बार आधार सत्यापन शामिल किया गया है। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारे सूचनात्मक जनउपयोगी सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यहीं समाप्त होता है।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी स्मृति।

भक्ति और प्रेम की त्रिविध बयार बह रही थी। शांति कुटी में खड़े बापू सभी प्रार्थना में निमग्न थे। छूत अछूत, बाल वृद्ध, नर नारियों का एक समूह इसमें भाग ले रहा था। रघुपति राघव

इस भजन की पवित्र ध्वनि कई कंठों से प्रतिध्वनित हो वायुमंडल को और भी पवित्र बना रही थी। प्रार्थना समाप्त हुई। प्रार्थना समाप्त होने के बाद बापू चरखा लेकर बैठ जाते थे और दिन भर के कामों में व्यस्त रहते थे। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने उसके बहिष्कार की घोषणा की। फलतः कमीशन जहां भी गया उसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाठियां चली, गोलियां बरसी, किंतु गगनभेदी नारा गूंजता रहा। यद्यपि आंदोलन स्थगित हो गया था किंतु ब्रिटिश सरकार शंकित थी कि कहीं पुनः आंदोलन की आग प्रज्वलित न हो, अतः उसने भारतीय नेताओं को प्रलोभन में फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने यह देखने के लिए कि भारत में स्वराज्य के लिए उचित वातावरण है या नहीं, एक कमीशन नियुक्त कर दिया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। कमीशन में जितने सदस्य थे सब अंग्रेज थे। सन 1929 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई। यदि ब्रिटिश सरकार एक वर्ष में भारत को औपनिवेशिक स्वराज न देगी तो भारत को विवश होकर स्वाधीनता की घोषणा करनी पड़ेगी। एक वर्ष का समय बीत गया किंतु ब्रिटिश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। 1929 ईस्वी के जनवरी माह में लाहौर में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गगनभेदी नारों के साथ पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया और गांधी जी को अधिकार दिया गया कि स्वाधीनता संग्राम के लिए कार्यक्रम बनाए जाएं। गांधी जी ने 1930 ईस्वी के मार्च माह में नमक कानून भंग आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने स्वयं 80 सत्याग्रहियों के साथ डांडी जाकर नमक कानून को भंग किया। वे बंदी बना दिए गए और उन्हें लाठी से चोट आई। उनके गिरफ्तार होते ही सारे भारत में नमक कानून भंग आंदोलन की आंधी चल पड़ी। लाखों स्त्री पुरुष गिरफ्तार हुए। जगह जगह लाठियों और गोलियों की वर्षा भी हुई। नमक कानून भंग की आंधी चल ही रही थी कि कांग्रेस और वायसराय में समझौता हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए। समझौते के फलस्वरूप 1931 ईस्वी में गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए लंदन गए, किंतु वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ा। गांधी जी अभी रास्ते में ही थे कि ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र पुनः चल पड़ा और आंदोलन की आंधी भी फिर से चल पड़ी। गांधी जी को पुनः गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में बंद कर दिया गया। जिन दिनों गांधी पूना के आगा खां महल में बंद थे, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून के द्वारा अछूतों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया। गांधी जी ने उस कानून के विरोध में आमरण अनशन का निश्चय किया। उनके अनशन से सारे भारत में हलचल पैदा हो गई। उनका अनशन कई सप्ताह चला। ऐसा लगने लगा कि उनकी आहुति हो जाएगी, किंतु मालवीय जी के प्रयत्नों से ये समस्या सुलझ गई। अंग्रेज सरकार ने अपने कानून को वापस ले लिया। गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में पुनः समझौता हुआ, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए। राज्य और केंद्र में

इस मंत्रिमंडल हो गया, परंतु कुछ ही दिनों पश्चात पुनः तनाव पैदा हो गया। कांग्रेस पदों को छोड़कर अब आंदोलन मार्ग पर चलने लगी। सन 1939 ईस्वी में दूसरे महाविश्व युद्ध की आग प्रज्वलित हो उठी। उस युद्ध की विभीषिका में अंग्रेज बुरी तरह फंसे हुए थे। वे अपनी विजय के लिए भारत की धन जन शक्ति का उपयोग करने लगे। कांग्रेस की ओर से इसका विरोध भी किया गया, पर अंग्रेज सरकार कहां सुनने वाली थी। सन 1942 ईस्वी की अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। फलस्वरूप सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही सारे भारत में आंदोलन की आंधी चल पड़ी। लाखों स्त्री पुरुष गिरफ्तार हुए। दो वर्षों तक आंदोलन चलता रहा और दो वर्षों के बाद महासमर बंद हो गया। युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यद्यपि वे विजयी हुए थे, पर अशक्त और भिखारी से बन गए थे। एक ओर भारत में छिड़ा उनके विरुद्ध आंदोलन और दूसरी ओर उनकी निर्बलता। उन्होंने अनुभव किया कि अब वे भारत को अपने चंगुल में नहीं रख पाएंगे। अतः अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़ दिया। भारत पूर्ण स्वाधीन हो गया।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना। कुछ ही पलों में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब

0: ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना।
1: मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य

0: मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi

0: श्रोताओं नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के अवसर पर विभिन्न प्रश्नों को लेकर मैं हूं आपका रेडियो मित्र हरिशंकर शिभरे और मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार भड़ेरिया जी और आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण प्रेमी भी हैं। भड़ेरिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
1: धन्यवाद सर।
0: और श्रोता हम आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसके, कब से मनाया जा रहा है और इस दिन कौन कौन से आयोजन किए जाते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके भी मन में होंगे और हमारे भी मन में हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में पधारे हुए जो भड़ेरिया साहब हैं उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इस पर आप प्रकाश डालिए।
1: जी बिल्कुल सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिवदेव जी, जहाँ तक बात है विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था
0: जी।
1: उसके उपरांत 73 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। जैसा कि आपने बात की कि इसके क्या उद्देश्य हैं, तो जो मुख्य उद्देश्य है वह है पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके प्रति वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता को उत्पन्न करना, क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक होगा तभी वह पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है और पर्यावरण से होने वाले नफे और नुकसान के बारे में जान सकता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं।
1: जी बिल्कुल, देखा होगा आपने कि वर्तमान में जो चुनौतियां हमारे बीच है, अभी एक बहुत बड़ी महामारी निकल गई है जिसे अपन कोरोना महामारी का नाम से जानते हैं। देखा होगा उसमें एक वर्तमान में देखें तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा या मिट्टी का प्रदूषण है, प्लास्टिक के कचरे की समस्या है, वनों की कटाई है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है और सबसे बड़ी बात जलवायु परिवर्तन। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निजात पाना बेहद जरूरी है
0: जी।
1: इसके कारण क्या हो रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ गई, बहुत प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, मानव का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि इनके प्रति हम जागरूक हों।
0: विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन पर?
1: जी देखा होगा आपने जितने जो वृक्ष लगे हुए हैं इनके जो हम फल आज सेवन कर रहे हैं, क्या ये हमारी पीढ़ी ने उगाए थे? जवाब होगा नहीं, ये पहले की पीढ़ी ने उगाए थे। तो वास्तव में हम उनको छात्रों को ये प्रेरित करते हैं कि जिस तरीके से किसी दूसरी पीढ़ी ने फल उगाए थे और हम उसका सेवन कर रहे हैं, हम भी कोई सब कुछ करके जाएं जो हमारे बच्चे हमें याद करें। और जो युवा पीढ़ी है वो सभी जानते हैं कि देश का भविष्य होती है, उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ऐसे आयोजन जो ऐसे दिवस हैं वो मनाए जाने चाहिए ताकि व्यक्ति जागरूक हो सके, अभियानों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, नदियों की साफ सफाई को प्रेरित करना चाहिए और खास तौर से प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 वृक्ष लगाने के लिए आह्वान करना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले पर्यावरण की समस्याओं से जूझ सके, उनसे निपट सके।
0: जी बिल्कुल, ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया है। आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े रहे
1: जी,
0: तो उस राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रहते हुए क्या कभी कोई ऐसे काम आपको याद आते हों जिसमें आपने पर्यावरण के प्रति किए हों, कुछ अगर ऐसे याद आ रहे हों तो वो कार्यक्रम आप बताइए।
1: बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ा था, एक सदस्य के माति रहा था, तो सामाजिक वानगी के तहत हमने कॉलेज से लेके आकाशवाणी होते हुए और कैंट क्षेत्र तक सड़क के दोनों तरफ वृक्षों का रोपण किया था, जिसको सामाजिक वानगी ने पानी देकर उसे सहेजा और बड़ा किया। वो वृक्ष आज भी देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। साथ ही साथ पीजी कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में छात्रों के द्वारा कई सारे वृक्ष लगाए गए हैं जो आज फलीफूत होकर फल दे रहे हैं और टेकरी के चारों तरफ

0: बच्चों ने वृक्ष लगाए जिसमें से कुछ फली फूते हैं, तो हम छात्रों को अब यही जागरूकता देते हैं कि वृक्षों को ना केवल लगाना है बल्कि उन्हें सहेजना है, संभालना है, ताकि उनकी यादें उनके साथ जुड़ सके।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपने बताया कि आज लगाया हुआ पेड़ निश्चित रूप से भविष्य में हमें फल भी देगा, छाया देगा, और जो पहले जिन्होंने ये काम किया है वो आज ये फलित हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण का आज ये दिन है
0: जी,
1: तो ऐसे में इस दिन क्या क्या आयोजन होते हैं और क्या क्या आयोजन हमें करना चाहिए?
0: बहुत बढ़िया शिवादी जी, क्योंकि आगे की पीढ़ी का जो भविष्य है वो पर्यावरण पर तला हुआ है। आपने देखा होगा आज की जो पीढ़ी है वो पर्यावरण से उतनी जुड़ी हुई नहीं है जितनी पिछली थी, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि आसपास जो क्यारियां होती हैं या बाग बगीचे होती हैं आसपास देखने को मिल जाते थे, अब सारे रोड के दोनों तरफ केवल कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं। तो जहां तक आयोजनों की बात है, आयोजनों में जब राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से तो बहुत सारे आयोजन होते ही हैं, लेकिन फिर भी जो ये दिवस है इस दिन हम खास तौर से जागरूकता अभियान चलाते हैं। जागरूकता अभियान चलाने के पीछे क्या है, जब व्यक्ति जागरूक हो जाएगा तो उसके प्रति उसकी संवेदनाएं बढ़ जाएंगी, तो उसके तहत क्या करते हैं हम छोटे छोटे बच्चों को बीज बम बनाना सिखाते हैं। मिट्टी में जो हमने आम खाए हैं, जामुन खाए हैं, उनकी जो बीज जो हम थूक देते हैं उनको रख के इकट्ठा करके उसको मिट्टी के बीच में डालते रख लेते हैं, और जब जहाँ जैसी जगह मिलती है उनको हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो जैसे ही बारिश होती है, जैसे बारिश का सीजन आने वाला, जैसे ही मानसून आता है, वो बम जो है वो फटते हैं, उनमें से बीज अंकुरित होते हैं और कहीं ना कहीं वो पौधे का रोपण कर लेते हैं। लोगों को यह भी बताते हम कि भाई जो नदियां हैं जो जीवनदायिनी हैं, अपने जो वृक्ष हैं जो जीवनदायिनी हैं, कुल मिलाकर इनका संरक्षण करें, संरक्षित करें, और खास तौर से जो मेन विषय है उसमें साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि हम साफ सफाई रखेंगे तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी रोगों से हम मुक्ति पा जाएंगे। और छात्र जीवन के जो छात्र हैं उन्हें ये बताते हैं कि जो कागज है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जितने कागज का अपन दुरुपयोग करेंगे वृक्ष उतने ही काट जाएंगे।
1: अच्छा, 5 जून को पर्यावरण दिवस पूरा देश मना रहा है, विश्व मना रहा है, तो क्या अपने पीजी कॉलेज जो कि गुना का बड़ा लोकप्रिय कॉलेज है वहां से कुछ जागरूकता रैली या कुछ कार्यक्रम?
0: बिल्कुल, निश्चित तौर से राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के जो हमारे अधिकारी हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनकी यूनिट है, उनके छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी की यूनिट है, ये निश्चित कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और केवल एक ही दिन नहीं करके पूरा 1 सप्ताह इसका आयोजन किया जाता है, और इस बार भी आयोजन किया जाएगा।
1: जी भड़ेरिया साहब, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
0: देखिए, मानव बड़ा लालची है, जब तक उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक वो उसके प्रति गहन रुचि नहीं रखता है। वास्तव में आपका प्रश्न अच्छा है, आपने देखा होगा औद्योगिकरण हो रहा है, चारों तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है,
1: जी
0: प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर, जलवायु पर, वन्य जीवों पर और जैव विविधता पर पड़ने लगा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसे दिवस की आवश्यकता महसूस की थी जो पूरी दुनिया को पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान कर सके, और कहीं ना कहीं जो आज जिस दिवस को हम बैठे हैं ये उसी का परिणाम है, उसी की जो आवश्यकता महसूस की गई है उसके अनुरूप इस दिवस को मनाने के पीछे ये उद्देश्य।
1: जी जी, अब आपसे हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है?
0: बिल्कुल, देखिए जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला जो है वो नागरिक ही है।
1: जी,
0: आपने देखा होगा जंगल का कोई भी जानवर है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, सबसे ज्यादा यदि पर्यावरण प्रदूषण करने वाला व्यक्ति है तो वह इंसान है। अच्छे से मुझे याद है जब मैं कूनो नेशनल पार्क में गया था तो एक पर्दा लगा हुआ था काले कलर का, किसे हटाओ पर्यावरण को प्रदूषण करने वाला सबसे भयानक प्राणी आपको दिखाई देगा, और हम बालक थे, हमने जैसे ही हटाया अपना चेहरा देखा हमें आज समझ में आ गया कि वास्तव में यह देखा जाए तो नागरिकों की ये जिम्मेदारी ही है, सरकार की नहीं है, नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो जल को

बिजली को है ना इनकी बचत करनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, प्लास्टिक का जहां तक हो वहां तक उपयोग बेहद कम, बहुत ही आवश्यक यदि किसी उसमें है तो करना चाहिए, नहीं तो मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। तथा स्वच्छता को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमें सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कचरा करेंगे तो सफाई करने वाले की आवश्यकता है, तो हम पहले से ही ऐसा प्रयास करें कि कचरा ना

0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, श्रोताओं को यही संदेश है कि वो अपने ऊपर ध्यान दें, मतलब हमें क्या करना है, हम अच्छी हवा ले सकें इसके लिए अच्छे पेड़ लगाना है, हम स्वस्थ रह सकें इसलिए सफाई रखना है, हमें जैसा हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी आए वैसा हमें काम करना है। तो श्रोताओं, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। तो बिल्कुल श्रोताओं, आपको हम बता दें, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर देवेंद्र भड़ेरिया जी उपस्थित थे और आपने जो अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी बात के साथ कि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है, अब हम आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार भड़ेरिया, शासकीय पीजी कॉलेज गुना से हरिशंकर शिवहरे की बातचीत। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी गुना है और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर अनुरोध की, और इस कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। तो श्रोताओं, आइए करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज और पढ़ते हैं हमारा पहला पत्र जो हमें भेजा है छत्रपति सांभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों, फिल्म अखियों के झरोखे से गई गीत अभी आप सुन रहे थे, गाये कलाकार हेमलता के स्वर में। आइए अब पढ़ते हैं इस कार्यक्रम का अगला पत्र। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग विरक और मीका विरक। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

एक फूल दो माली फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा जी के स्वर में। श्रोताओं आइए बढ़ते हैं हमारे अगले पत्र की ओर जो हमें भेजा है पटेल नगर मालोड पंजाब से रमेश कुमार जांजोरिया गीता रानी गगनदीप और बेबी आरजू जांजोरिया ने। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों, हेमलता और यशुदास के स्वर में आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म का ये गीत। आइए पढ़ते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है चांडूर विश्वा तालुका नादुरा जिला बलूडाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, राक्षाताई खड़से, ललिता संजना, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दत्रेगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश का ये गीत।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर जी के स्वर में। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम श्रोताओं की फरमाइश पर अनुरोध गीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बास।

0: sbs.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। अच्छे से शासन करें।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
5: बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद।

0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
2: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है
1: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
2: कैसे
1: नकली फिर आया था?
2: नकली ही ना तो सकता,
3: नकली कैसे आ गया?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
4: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें। महाराज
4: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
4: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
4: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
6: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
7: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलड़ू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग

खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है और अब प्रस्तुत है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक फनकार। तो दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस महान अदाकारा और गायिका पर जिन्हें अपनी मखमली आवाज और बेहतरीन अभिनय के लिए मलिकाए तरन्नुम भी कहा जाता था। वह भारतीय फिल्म इतिहास की आखिरी गायक और अभिनेत्रियों में से एक थीं।

जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और गायिका सुरैया जी की, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और गायन से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनका जन्म 15 जून 1929 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। सुरैया का असल नाम सुरैया जमाल शेख था।

दोस्तों, सुरैया जी के बारे में हम आपको बता दें कि जन्म से ही वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। नाजों से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की कोई भी शिक्षा नहीं ली, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायिका से हर कदम पर खुद को साबित किया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना से कार्यक्रम एक फनकार, और हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अदाकारा और गायिका सुरैया जी पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुरैया जी के फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके से हुई। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देख

फिल्म केंद्रित है मशहूर अदाकारा और गायिका सुरैया जी पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुरैया जी के फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके से हुई। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी तो निर्देशक नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के लिए चुन लिया। इस तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी और उन्हें फिल्म शारदा में गीत गाने के लिए चुना।

दोस्तों, सुरैया जी ने ताजमहल फिल्म में, जिसमें उन्होंने युवा मुमताज महल का किरदार निभाया था, उनकी पहली सफल फिल्म 1943 में आई इशारा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया। सुरैया ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी, जिनमें मिर्जा गालिब, दो सितारे, खिलाड़ी, सनम, कमल के फूल और विद्या फिल्म शामिल हैं। उन्होंने कई एक गाने में अपनी आवाज़ दी, जिनमें से कुछ बहुत लोकप्रिय भी हुए।

दोस्तों, सुरेया को उनकी अदाकारी और गायन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें मिर्जा गालिब के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक शामिल है। उन्हें मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारा जैसी नामों से भी जाना जाता था।

दोस्तों, सुरैया जी की जोड़ी मशहूर कलाकार देवानंद जी के साथ काफ़ी हिट रही। उन्होंने उनके साथ जीत और दो सितारे जैसी फिल्में की जो बहुत ही खास रहीं।

दोस्तों, सुरैया जी का निधन 31 जनवरी 2004 को मुंबई में हुआ था। उनकी विरासत आज भी हिंदी सिनेमा में जीवित है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फनकार, जो केंद्रित था मशहूर गायिका सुरैया जी पर। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पीके हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रोधी मार्ग को टू लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

0: नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में पांचवा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुरुष लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्य खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
2: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना, प्रस्तुति राजकुमार कौशल की।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा है।
0: सूर्य प्रताप यादव जी स्वागत है आपका।
1: जी सर, आपसे तो मेरी बात होती रहती है अक्सर।
0: जी बिल्कुल।
1: कैसे हैं सर आप?
0: हम ठीक हैं, आप बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं।
0: आज कौन से गीत के लिए आपने कॉल किया हमें?
1: आज एक गीत है, फिल्म का नाम है मुगले आजम।
0: मुगले आजम का कौन सा?

0: मोरे पन घट पे नंदलाल छिड़ गए और।
1: अरे वाह, आज कैसे याद आया ये गाना आपको?
0: एक्चुअली ये गाना एक हमारे हमारे मित्र हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी रेडियो से जुड़े हुए हैं,
1: अच्छा,
0: उनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। जिला अशोकनगर ग्राम दखेड़ा के रहने वाले हैं डालचंद बाबा जी, उनको ये गीत मैं सुनवाना चाहता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा गीत है। और मुगले आजम के तो किसी भी गीत की बात करें, मुगले आजम के किसी भी एस्पेक्ट की बात करें,
0: हाँ मुगले आजम के तो सारे गीत बहुत अच्छे
1: हैं।
0: मैंने
1: गीत भी सारे अच्छे हैं, कहानी, फिल्मांकन, सभी कुछ कुल मिला के मतलब फिल्म ही सब कुछ थी और सब कुछ था उसमें।
0: उसमें कव्वाली भी बहुत अच्छी है, भारी महफिल में ये दिल आजमा कर हम भी देखेंगे,
1: हम भी देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी थी। शमशाद बेगम की भी आवाज है उसमें,
0: और
1: बहुत बहुत अच्छी
0: कव्वाली
1: जी जी जी जी। तो चलिए, आज आपने जो गीत पसंद किया है वो भी बहुत अच्छा गीत है और हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी कर रहे हैं। सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना, नमस्ते सर।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुंदरलाल केवट बोल रहा हूँ बोरा से।
0: सुंदरलाल केवट जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हमको वो सुनवा दीजिए सर गीत, नदिया की पार को।
0: कौन दिशा में?
1: हाँ कौन दिशा में, लेक चलोरी भटूरिया।
0: अच्छा, बिल्कुल जरूर सुनवाएंगे। और क्या करते हैं आप सुंदरलाल जी?
1: कुछ नहीं करते हैं सर, अब तो अभी धूप सी पड़ती है, अब थोड़ी ठंडक सी हो चुकी है।
0: हाँ।
1: और कुछ नहीं है सर, अब बरसात के उसमें लगे हैं खेती किसानी।
0: हाँ, खेती किसानी का अभी तो बरसात की तैयारी, खेत तैयार कर रहे होंगे आप।
1: बरसात तैयारी
0: क्या, अब अगली बार क्या सोचा है आपने, क्या खेत में लगाना चाहते हैं आप?
1: ये मक्का की सोच रहे हैं सर।
0: मकई, बहुत अच्छी बात है, मक्का लगाए तो। और

0: समय पे फसल निकल भी आती है और अच्छा दाम भी अच्छा मिलता है मक्का का।
1: हाँ हाँ जी सर।
0: और फसल चक्र तो आप अपनाते ही होंगे, हर बार बदल बदल के फसलें लगाते होंगे।
1: हाँ बदल बदल के चलते हैं सर।
0: तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी खेती के साथ है, और हमारा आपकी पसंद का ये गीत हमारे इस रेडियो से प्रसारित आपके लिए कर रहे हैं आकाशवाणी गुना से, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। कॉल करने के लिए सुंदरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: वाह वाह, बहुत अच्छा, नाम भी आपका बहुत अच्छा है। तो आप कुछ गजल वजल भी लिखते हैं क्या?
1: नहीं सर, बस फरमाइशी करते हैं इसमें।
0: अच्छा, फरमाइशी करते हैं, क्योंकि आपका नाम ऐसा थोड़ा शायराना है
1: जी, जी, जी। नाम तो मोहम्मद साबिर अली है, लेकिन जब से रेडियो जगत में आए तब से परवाना लगा दिए टाइटल।
0: अच्छा, अरे वाह। ये आमतौर पर ये काम तो शायर करते हैं
1: जी जी, तो परवाना लगा दिए इसमें।
0: अच्छा,
1: अभी मान लीजिए जो अपना आईडी है पूरा प्रूफ है वो मोहम्मद साबिर अली से है।
0: अच्छा, मोहम्मद साबिर अली नाम है वैसे, पर साबिर परवाना नाम से आप
1: रेडियो रेडियो जगत में उसमें परवाना लगा दिए।
0: आपको कहाँ, आपने जगह का नाम क्या बताया, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार।
0: अच्छा, क्या बात है, बिहार से बहुत दूर से बोल रहे हैं आप
1: जी सर।
0: तो हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत बढ़िया लग, जब से मोबाइल ऐप पे आता आया है सबसे और बढ़िया सुन लेते हैं हम लोग।
0: हाँ जी, हाँ जी। तो आज कौन से गीत के लिए आपने सोचा था कि बात करेंगे?
1: आज सर फागुन फिल्म का गाना सुना दीजिए, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया।
0: वाह वाह, एक परदेसी, बहुत ही अच्छा गीत है, और हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी कर रहे हैं, आपको ये गीत सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: नमस्कार सर।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: साबिर परवाना जी,

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सर जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अशोक सिंह जी बताइए।
1: सर आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ सर, गर्मी का मजा ले रहे हैं। सर
0: बिल्कुल सही बात है। आप
1: सर,
0: तो
1: आप
0: तो नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, कभी भी जाकर स्नान कराएं, अच्छा ठंडक आ जाएगी।
1: नर्मदा जाने से ठंडक आएगी।
0: जाने से तो आएगी, ये बात तो सही, जाना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ता है।
1: जी सर, रहता है ना, के पास तो कोई जा पाता नहीं, सुबह तो आता नहीं।
0: सही बात है। अच्छा, दूर रहने वालों को लगता है कि अरे वाह काश हमारे इतने पास में नर्मदा जी बह रही होती।
1: पास वाले नहीं जा पाते।
0: हाँ ये होता है, पास वाले कई बार नहीं जा पाते, लेकिन दूर वालों को आके चले जाते हैं कई बार, है ना?

0: और जब बेड़ा घाट हो जाता है कई महीने हो जाते नहीं पहुंच
1: हाँ नहीं
0: पाते।
1: जा पाते, सही बात है। चलिए बहरहाल, कौन सा गीत आप पसंद कर रहे हैं ये बताएं।
0: सुना दीजिए सर, शादी का गीत सुना दीजिए, कुछ
1: कौन सा
0: याद आ रहा है।
1: कौन
0: घर
1: सा,
0: में होते माँ खुश होती, मेला लगता घर आंगन में,
1: क्या घर में,
0: मन की बातें रह गई मन में जी।
1: घर में होती,
0: घर में होते माँ खुश होती, मेला लगता घर आंगन में,
1: क्या बात है।
0: मन की बातें रह गई मन में, तो क्या हुआ तेरी मेरी शादी थी जी शादी। पंडित ना सहनाई रे,
1: अरे
0: इन
1: वाह
0: सब का क्या काम, जहाँ सामने बंसी बजाई।
1: वाह वाह, कौन सी फिल्म का है ये गाना?
0: दिलदार मूवी जितेंद्र रेखा पर फिल्माया गया था,
1: दिलदार, क्या
0: सुभाष
1: बात
0: घोष
1: है,
0: ने किया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, आपने बहुत ही अच्छा गीत पसंद किया है, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी कर रहे हैं।
0: बहुत
1: और
0: बहुत धन्यवाद जी सर जी, हृदय से धन्यवाद
1: नर्मदा तट पर
0: सर।
1: बैठकर अपने संस्कार धानी में ये सुंदर सा गीत आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए।

0: दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना तो हमें कॉल कीजिएगा प्रतिदिन 10:05 से लेकर 11 बजे तक। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक रहता है 254205। गुना के बाहर के श्रोता गुना का एसटीडी कोड अवश्य लगाएं 07542। कीजिए अपने मन की बात हमारे इस कार्यक्रम में और सुनिएगा अपने पसंद का बेहतरीन गीत। तो सुनते रहिए हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना।
2: हेलो एफएम सर, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सुनील शर्मा बात कर रहा था, जिला अशोकनगर, ग्राम करुआ राय।
1: क्या सुनील शर्मा?
2: जी।
1: अरे वाह सुनील, स्वागत है आपका।
2: सर कैसे हो आप?
1: हम बढ़िया हैं, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
2: भी ठीक है सर।
1: बताइए कौन
2: सा बारिश का मौसम आने वाला है?
1: हाँ, अब तो सबको इंतजार है कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए तो इस गर्मी की तपन से मुक्ति मिले हमें।
2: हाँ सर।
1: तो ऐसे मौसम में कौन सा गीत याद आया आपको? अच्छा लगे
2: आपके हिसाब से सुना दो सर, मौसम के ऊपर।
1: मौसम पे?
2: हाँ सर।
1: ठीक है सर। है ना, हम आपको सुनवा रहे हैं गीत, लगता है कि आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: इंद्रभान सिंह जी स्वागत है आपका।
0: ठीक है सर, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं, ड्यूटी पीरियड में हूँ सर। और यहाँ तो मौसम परिवर्तन हुआ है सर।
1: जी जी।
0: और पानी वानी खूब गिरा है सर, और भी धूप भी किया है, हल्का धूप किया है, बादल किनारे किनारे बादल किया है सर। और ये कोई कहा नहीं जा सकता सर, फिर मौसम परिवर्तन होगा तो फिर जम के पानी आएगा।
1: जी जी।
0: लेकिन
1: जी।
0: बस गर्मी भी है सर और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हवा चल रहा है।
1: हमें मालूम होता है कि इंद्रभान सिंह जी का जब भी फोन आएगा तो मौसम के समाचार तो हमें मिलेंगे ही, समाचारों का प्रसारण होगा। मौसम से आप शुरुआत करते हैं तो बताइए, आज कौन से गीत के लिए आपने हमें कॉल किया है?
0: फिल्म का नाम है सर और गीत के बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो सर जी।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
1: बबलू जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम कदवाया से बोल रहे हैं।
0: कदवाया।
1: हेलो।
0: अच्छा हाँ जी हाँ जी। कौन से गीत के लिए आपने हमें कॉल किया है?
1: हमारे को सुनना है छोड़ के ना जा पिया।
0: पर ये गाना पुराना है नया है? क्योंकि इस बोल से बहुत सारे गीत हो सकते हैं। आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये तो
1: यही है गीत के बोल तो चाहिए छोड़ के ना जा।
0: तो किसने गाया है? कुछ गायक गायिका का कोई आइडिया?
1: इसका तो पता नहीं है सर जी।
0: अच्छा तो अगर इस बोल से कोई भी गीत होगा आपको चल जाएगा ना? छोड़ के ना जा पिया ये शब्द होना चाहिए उसमें है ना?
1: हाँ हाँ बस यही है।
0: ठीक है हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी कर देंगे। और आपने हमें कॉल किया है, लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो छोटा संघ बस स्टैंड बंडा वेले के लक्ष्मण को चाय वाले
0: बंडा जी, बंडा वेले से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर।
0: हाँ जी लक्ष्मण जी, पता ही कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बस आज गीत सुनवा दो, ये पिक्चर है हमें आपके कौन,
0: हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन,
1: कोई भी सुनवा देना।
0: अच्छा तो आपकी फरमाइश हम अभी पूरी कर रहे हैं लक्ष्मण जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो, मैं शिवानी केवट बोल रही हूँ सर।
0: शिवानी
1: मुझे
0: केवट कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: कदवाया से बोल रहे हैं।
0: कदवाया से बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुझे दिलवाले फिल्म के गाने सुनेंगे।
0: दिलवाले? दिलवाले फिल्म का कौन सा?
1: एक ऐसी लड़की थी।
0: अच्छा जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। आप करते क्या हैं शिवानी जी?
1: दुकान पर रहते हैं।
0: दुकान है आपकी, किराने की?
1: नहीं, वो हमारे सेठ जी की।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। दिलवाले फिल्म का गीत आपके लिए आ रहा है, लीजिए सुनिए शिवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो हेलो एफएम गुना।
1: हेलो आकाशवाणी गुना।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे
1: हैं? मैं ब्रजमोहन सिंह बोल रहा हूँ, बारोद से। आरोन
0: आरोन से जी जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आपकी आवाज थोड़ी मंदी आ रही।
0: हाँ नहीं, रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है, आप तो बोलिए।
1: हाँ
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं गीत सुनूंगा बॉबी का।
0: बॉबी
1: झूठ बोले कबुआ काटे।
0: अच्छा आपने कभी देखा है ऐसा होते हुए? कभी होते हुए देखा है ऐसा आपने?
1: नहीं कुछ नहीं, वो गाने सुने।
0: क्योंकि हमने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी ने झूठ बोला और आके कोई कौवा काट गया उनको। ये गाना है, बस गाना बन गया और क्या, बढ़िया है। पर ठीक है, जैसे कहावतें रहती है उस पर बन जाते हैं गाने, पर गाना अच्छा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, बॉबी फिल्म का गाना है और हमने बचपन से सुना है इस गीत को। आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी कर रहे हैं ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें प्राप्त हुआ जितेंद्र मीणा का, प्रस्तुति सहयोग हरिशंकर शिवहरे का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। अब अपने दोस्त प्रवीण शर्मा को दें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उद्यानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे सखी सहेली।

है छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों सी दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंधु।

भी कविताएं वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में। नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज।

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा माने जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चू पड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल।

भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चलें वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की पहाड़ देवदार के बगीचे में बाहर के झरना नदी चलता नीले नंबर अंबर चांद जब आए हमको तरसाए बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम की टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नजारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियां, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूं तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहे।

सकते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं? चलिए याद करते रहिए और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म दो दूनी चार, बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दूनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं।

नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।

किनारा। दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें,

लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूं तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर कर पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में। हंसर जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है, देव आनंद नूतन पर फिल्म

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में। हसर जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटकेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाओं में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण कमले।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग बंग विरोधी आंदोलन

अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा। इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्रपाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु यह सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़

0: हमला कर दिया।
1: इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही
2: बहुत कठोरता से इस लाठी के आंदोलन करने लगे। लाठी की मां के साथ मातरम का घोष और थी, मांगो जाए जी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: निर्दय लाठी चार्ज से
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
2: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक

के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका अनुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और

0: बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम

0: से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
4: लोकल फॉर भोग है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि

0: से 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह, अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते। मैम
0: नमस्ते। कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंदा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे। मैम
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं।
1: हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ मैम,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने
1: जी
0: का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी
1: मैम
0: पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनती रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो
0: जी,
1: गया है,
0: जी
1: तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर
1: मैं
0: से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: जी।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली की अच्छी वाली? नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम, हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप
1: जी
0: थोड़ा बॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही अच्छा
1: बिल्कुल।
0: आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और
0: हैं।
1: अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है। घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से। जी
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके
1: वो तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे
0: बिल्कुल
1: पहले, सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से मेरा
0: वाह।
1: रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता है, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है ना
1: और
0: आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं, गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से आप, पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात
1: हाँ,
0: कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है,
0: जी
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलिया, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जादू साइड पान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ।
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस
0: बिल्कुल
1: और म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको
1: हाँ।
0: सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ।
0: हाँ,
1: रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी, और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउस वाइफ है क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है, और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है,
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है,
0: बहुत
1: छोटी
0: बढ़िया
1: सी।
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी, बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: जी हाँ, लगा रखे हुए, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत
1: जी,
0: अच्छी
1: जी,
0: बात है
1: जी।
0: ये। और साथ
1: चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना,
1: लगती
0: तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना तो
1: खुशी है, सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी।
0: तो अब बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये, आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए, पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोते है।
0: तो आप कहाँ से
1: मैं
0: हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर
0: तो
1: में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ।

0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
1: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
0: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की,
1: अरे वाह,
0: बीएससी नर्सिंग की।
1: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
0: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
1: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
0: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली कर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
1: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
0: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
1: अच्छा,
0: तो हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
0: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
1: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं, तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपनी घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
0: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: तो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
1: सुजाता का कौन सा?
0: 2000 साल।
1: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाती हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम। मैं
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें। तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा, भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।

वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो, नजरिया बदलो अपना, नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है, तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है, माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह, आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो, तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो, सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो

खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया।

आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर

मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है।

आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

सपनों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है, शायद यही तो प्यार है। जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

करता है कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

अज समझे।

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

जी विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तैरानी नहीं पुरानी।
1: तरानी नई पुरानी।
0: तरानी नई पुरानी इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह, फिल्म का नाम है वारिस, गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की, फिल्म का नाम है आपकी खातिर। इस गीत को लिखा है शैली शैलेंद्र ने और धुन बनाई है बप्पी लहिरी ने।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बिचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, रघुनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके।

बाबुलदेव बर्मन की संगीत निर्देशन में हम आपको अनजान का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अभिजीत के हैं। फिल्म का नाम है आनंद और आनंद।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और अभिजीत की। फिल्म का नाम था आनंद और आनंद। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए लिया है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है ये। आवाजें हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम है पति पत्नी और तवायफ।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम आंगन की कली। गीतकार हैं शैली शैलेंद्र और संगीतकार हैं बप्पी लाहिड़ी।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जुबानी में। मैं हूं आपका अपना साथी विशाल चौरसिया। साथियों, कार्यक्रम के प्रथम भाग आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व एवं महानता के दो आधार, समय प्रबंधन श्रेष्ठ विचार। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम के द्वितीय भाग में सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम श्यामे गजल के अंतर्गत गजलें। तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष आज ही के दिन 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी

समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, इसलिए इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथियों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं और आने वाली पीढ़ियों की भी है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो भविष्य में संकट बढ़ जाएगा, इसलिए हमें पानी, हवा और जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इससे लोगों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित होती है। अंत में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम आज पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ सुनते हैं साथियों कार्यक्रम का प्रथम गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं या उन्हें सच भी करना चाहते हैं? आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना में प्रवेश लीजिए। तो आज ही विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.kttb.in को ओपन करें और विश्वविद्यालय में प्रवेश लें। क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना, जहाँ सपने बनते हैं हकीकत।
4: साथियों, उस चर्चा पर पुनः लौटते हैं। समय का प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का सही उपयोग करके कार्य को प्राथमिकता देना और उन्हें निर्धारित समय में पूरा करना। साथियों, समय प्रबंधन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे लक्ष्य निर्धारित करें, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, प्राथमिकता तय करें। साथियों, महत्वपूर्ण और तत्कालिक कार्य को पहले करें, योजना बनाएं, दैनिक साप्ताहिक या मासिक कार्यसूची तैयार करें, समय सारणी का पालन करें, तय किए गए समय के अनुसार काम करें, टाल मटोल से बचें, कार्यों को अनावश्यक रूप से न टालें और विचलनों को कम करें, मोबाइल सोशल मीडिया आदि पर नियंत्रण रखें। साथियों, समय प्रबंधन के लाभ। कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि, तनाव में कमी, लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन। श्रेष्ठ विचार। साथियों, श्रेष्ठ विचार जीवन की वह शक्ति है जो मनुष्य को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे और सकारात्मक विचार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं और उसे सफल एवं सम्मानित बनाते हैं। जीवन में जैसे जैसे हमारे विचार श्रेष्ठ होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यवहार भी अच्छा होता जाता है। श्रेष्ठ विचार हमें ईमानदारी, परिश्रम, सत्य और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे विचारों से व्यक्ति न केवल स्वयं का विकास करता है बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनता है। महान व्यक्तियों के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और अच्छे विचार ही सफलता की कुंजी हैं। यदि व्यक्ति के विचार नकारात्मक हो तो उसका जीवन भी दुखों से भरा जाता है, लेकिन अच्छे विचार उसे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देते हैं। विद्यालयों में भी छात्रों को अच्छे विचार अपनाने की शिक्षा दी जाती है ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सकें। साथियों, अतः हमें हमेशा श्रेष्ठ विचारों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल, सुखी और सार्थक बनाना चाहिए। श्रेष्ठ विचार ही अच्छे जीवन की आधारशिला है। इसी के साथ साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या

0: कंधों में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
2: डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों शुक्रवार स्पेशल कार्यक्रम श्याम गजल में सुनवाएंगे आपको गजलें। राज हमारे भी कुछ छुपाते हैं, आंखों में कई किस्से दबाते हैं, हम पूछते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, दिल के दर्द को खुद ही छुपाते हैं, चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, हर बात को अपने दिल में बसाते हैं, कहने को तो सब ठीक है यहाँ पर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। तो साथियों सुनिए कार्यक्रम की प्रथम गजल।

साथियों, ये शाम फैल गई उदासी की तरह, दिन में उतर गई खामोशी की तरह। जो बातें दिन में हंसा जाती थी अब याद बनकर रुला देती हैं खामोशी की तरह। ढलते सूरज संग उम्मीद भी ढल गई, ये शाम फैल गई तन्हाई की तरह। सुनाते हैं साथियों कार्यक्रम की आपको दूसरी गजल।

आशा है साथियों आपको आज का युवाड़ी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए साथी के साथ एक नए विषय पर चर्चा के। तब तक के लिए मुझे विशाल चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: FM।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना का प्रसारण, प्रस्तुत है आज की शाम, लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रवीण शर्मा। सभी को नमस्कार। श्रोताओ, फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं लवर्स फिल्म के गीत से। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत है, बोल आनंद बख्शी के, धुन आर डी बर्मन की।

काहल फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और ए आर रहमान की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल संगीत खुद ए आर रहमान का है।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गुलजार के बोल हैं संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आज की शाम प्रोग्राम में बस इतना ही। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे

0: पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबनन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें। अभी 7:21 पर आप सुनेंगे लोक रंजनी कार्यक्रम। इसमें आप सुन सकते हैं कुछ पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। ग्राम सभा शाम 7:30 से हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 भोपाल केंद्र से ही होगा सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आज इसकी 5वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। रात 8:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 9 से विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये था विवरण इस सभा के शेष कार्यक्रमों का।

श्री रामचरित मानस गायन में कल का प्रसंग होगा सुरेश बाटकर और साथियों के स्वर में। प्रसारण समय सुबह 6:35, सुबह 6:45 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। इसमें मनोहर लाल सोनी और साथियों के गाये पारंपरिक बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह सवेरे कार्यक्रम में कुछ सूचनाएं और फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:21 पर।

पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा होगा सुबह 8:30 बजे, प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल। सुबह 9 बजे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और सुबह 9:30 बजे होगा एक फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे पर, प्रस्तुत करता होंगे प्रवीण शर्मा। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 10:05 से आप सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो FM गुना, प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल। दिन में 11 बजे से विविध भारती के विविध कार्यक्रम मनोप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:10 पर संस्कार सरिता कार्यक्रम जिसमें देशगान होंगे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 5:30 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 6 बजे सुगम संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज की शाम कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इसके अलावा फिल्म संगीत रात 8:35 पर भी होगा। शाम 7:21 पर प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, इसमें आज की बात होगी बाल मजदूरी एक अभिशाप और कानून, इस विषय पर सामयिक कृषि चर्चा में फसल चक्र और अंतर्वर्ती खेती और इसके लाभ विषय पर चर्चा होगी। एक भेंटवार्ता भी इस कार्यक्रम में होगी, साथ ही होंगे कुछ पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इन दिनों, इसका प्रसारण हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं 8:00 बजे। कल इसकी 6ठी कड़ी आप सुन सकेंगे और 9:00 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के विविध कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। ये था विवरण इस सभा के शेष और कल के कार्यक्रमों का। FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए। बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व

0: पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉ यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
2: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पवंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के

पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच एमओयू साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को जीआई टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल्य कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंजनी। आइए सुनते हैं कुछ पारंपरिक बुंदेली लोकगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं एक देवी गीत। कलाकार हैं भुजबल रायकवार।

0: लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम से संबंधित विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचार हम जानते हैं।
2: हम कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का पांच तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें, तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत ब्रह्मांड, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्योदय सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के

0: जुड़ा हूँ मैं बचपन से। हमारे घर में क्या है कि हमारे जो बहन थे तो उन्हें छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, तो हमने प्रेरणा वहाँ पाई। बाकी हमारे गांव में एक तालाब था, तो तालाब में क्या है सर, एक वो जैसे गांव की भाषा में कलम डाला खेलते थे, ऊपर चढ़ के ऊपर नीचे उठते थे, तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली होगा। तो वहाँ से मेरा मैंने आज दिनांक 548,934 पौधे जो परसों को निजी भूमि में लगाए, जो फॉरेस्ट के जंगल वो तो अपनी जगह है ही सही। बाकी मैंने कहा कि ये जंगल तो है ही है, कौन नहीं अपन ऐसा करें जो एक निजी रोपण भी हो जाए तो उनके कोई सांस के कोई पैसे लगे ना कुछ नहीं, सुरक्षा भी बरबारी हो जाए काश्तकार कर लेंगे। बाकी हुक्म निवेदन है कि इसके अलावा काश्तकार को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो एक सांस की जंगल जो कटने जा रहे थे वो बचे है ना, अपनी पाठ बल्ली जो अपने निर्मित करी खुद ही अपने मतलब उन्हें मतलब ये मतलब उपयोग करी, इस कारण से जंगल का भी बड़ा। और इसके हुक्म मैंने एमपी तक भी निपट नहीं रहा, मैं राजस्थान में भी ये प्रक्रिया अपने जो थे बहुत से लोग क्या पहले मूली काटते थे, आदिवासी लोग क्या है कि जंगल में जाके मूली काट के बेचते थे, मैंने उनको क्या करा 20 से जोड़ा उनको पौधे तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन था तो वहाँ तो मैंने बेड तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन उनके नहाने धोने की जगह होती थी ना जो पानी जाता वहाँ पे मैंने पौधे तैयार करे 200 वो पौधे मतलब हाट बाजार में बिकवा के उनको अड्डी टाइप पैदा करी, वो 6 पौधे उनकी निजी भूमि में लगाए जो काफी वृक्षों के मान में हो गए हुकुम। तो और सभी कलेक्टर महोदय फॉरेस्ट अधिकारी महोदय ने जो मैंने लगाए पौधे जो वृक्ष बने सबने सत्यापन करा। अभी गत वर्ष 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब मातम साहब ने मैंने एक रोजर नदी जो निकलती है पिपुदा से वो मैंने उन्हें दोनों सिरों पर रोकने की कोशिश करी, दोनों साइड पे मैंने पौधे लगा के वृक्ष बनाए, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि चलो हमें बताओ। तो 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब ने वो रोजर नदी जो बहती दोनों सिरों पे भूमि कटाव रोकने का तो उनने 1 किलोमीटर जो मतलब घूम के उन्हें निरीक्षण करा, तो उन्हें बेहतर बजाय मेरे को सम्मानित करा इसके लिए। और हुक्म इसके लिए संभाग लेवल के कलेक्टर महोदय कितनी बार में संभाग गोल्ड मेडल मिला हो मेरे को, ग्रीन आइडल अवार्ड मिला, और आप लोग भी मेहरबान।
1: हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपने स्तर पर क्या प्रयास करके वो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं?
0: किसान भाई मेरे लिए एक देवता, एक मतलब क्योंकि मेरे को उनने संभाला नहीं, उनने मतलब क्या मेरे मतलब कार्यशैली को उनने संवारा, उनने मेरी बात मानी और अपनी निजी भूमि में जो मेरे कहने के अनुसार जो अपनी भूमि मतलब जो शेष भूमि जो छोड़ के उनने वृक्षारोपण करे जो वृक्षों के रूप में पड़ती है, तो मैं सबसे बड़ा मेरे साथ में अभी भी कर्षक भाई अभी आए हुए मेरे सभी बोलो सभी मतलब आज भी मेरे साथ में कुछ लोगों को लाए जो मैंने मतलब रोपण करा रखा उनका,
1: मतलब अपने स्तर पे कर कर संरक्षण कर सकते पर्यावरण।
0: पर्यावरण सब मैंने मेरा फोकस तो कम सबसे ज्यादा मैं मतलब कर्षक भाई को ही देता हूँ, मतलब जो मेरी बातें उनने सर स्वीकार करी और विकट परिस्थिति में भी मतलब भूमि का टुकड़ा छोड़ के उनने पहले तो हुक्म थोड़ा सा ये हुआ कि झाड़का वाला है कौन झाड़का लगा है, मतलब शुरुआत में मेरे को बहुत कठिनाई शुरुआत में करे झाड़के तो मतलब क्या छुप जाते लोग, तो मैंने मतलब पर्यावरण पेड़ पौधे सबसे उनको बताया मैंने चलो अपन क्या है कि ये बेड़ा कर सके उठा सकते जो अपन क्या पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण देंगे जो मतलब पूरी दुनिया को मतलब संचालित करेंगे, तो मतलब क्यों नहीं ये सब पुनित कार्य में अपन तो कुछ एक जोड़ा और हुक्म में जैसे मेरा फोकस ये रहा जैसे कहीं होटल पे गया तो जब होटल में 4 आदमी बैठे हैं वहाँ तो सक्सेस नहीं होता उसमें क्योंकि वो तो मजा के रूप में लेते हैं, तो मैंने कहा ये मतलब ये तरीका है ये ठीक नहीं, तो मैंने सीधा मतलब लोगों के घर पे ही जाना शुरू करा, मैंने भैया आपके मतलब जमीन वगैरह कोई पौधे के नहीं है, तो मैंने क्या करा हुक्म जैसे थोड़ा सा मैं आपको से कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा ये रहा कि भैया आपके गांव का क्या नाम है कि धावड़ा दे धावड़ा का वृक्ष, मतलब धावड़ा दे तो मैंने धावड़ा दे वृक्ष कहाँ है ना, नाम तो
1: वृक्ष
0: के नाम से गांव में रखा जाता था, तो मैंने ये धावड़ा तो मैंने धावड़ा के वृक्ष कहाँ या कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्यों नहीं जैसे मतलब तो धावड़ा के जो अपने जो एक नामकरण बना वो तो चीजें होना चाहिए, जैसे गुलरी पाड़ा मतलब आंबा पाड़ा और मतलब क्या खेरिया पाड़ा, ये हुक्म क्या है कि वृक्षों के नाम से गांव रखे तो मैंने वो तो आज दिख भी नहीं रहे, तो इस प्रकार से मैंने और हुक्म एक मैंने ये देखा क्या है कि प्रजातीय मतलब वृक्षों के नाम से जो अपने दीवार के आसपास देवी पूजा होती है ना वृक्षों के नाम से, जैसे मैं राठौड़ हूँ तो हमारे नीम की पूजा होती है, तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत जोड़ा, मैंने चलो आपकी का पूजा हो गया फलाने तो मैंने ये पेड़ लगा हुआ, तो मतलब इससे मतलब प्रेरणा मिली तो ये मतलब वृक्ष बढ़ते गए हुक्म
1: जोड़ा
0: जी हुक्म,
1: और भावना से जोड़ा
0: मतलब क्या मैंने धार्मिकता से जोड़ा चारों तरफ से मैंने क्या है जी हुक्म, और अभी भी मेरा लक्ष्य है अभी मैं करीबन इसी मतलब साल इसी बरसात में करीबन 4-6 हजार पौधे मैं फिर लगाऊंगा, और मेरा रेशा हर साल हुक्म ये रहा है 4-5 हजार पौधे मतलब मैं हर वक्त में लगाता हूँ, और जहाँ तक मेरी जीवन है वहाँ तक मैं ये पुनित कार्य मैं करता रहूँगा।
2: हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अधीक्षण यंत्री श्री हनुमत सिंह मालवीय जी, वो हमें बताएंगे कि किस तरह प्रदूषण मुक्त होकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, आइए जानते हैं उनके विचारों को।
3: जैसा कि आपको विदित है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि विश्व

0: पर्यावरण चिंतन के ऊपर हुई थी, उसमें भारत सरकार द्वारा भी भाग लिया गया था, जिसमें हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। उस समय से ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और उसका प्रतिवर्ष यूएन द्वारा एक थीम दी जाएगी। इस वर्ष की थीम जो दी गई है, इंस्पायर्ड नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, और हैशटैग दिया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक विकास और अर्बनाइजेशन की वजह से जल एवं वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है, और इसके वजह से हम देखें तो इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारी आम जनता और जितने श्रोतागण हैं उनसे अपेक्षा है कि वह इन कारणों के निदान के साथ साथ इनसे कैसे निपटा जाए, जिसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप पाएंगे कि अभी बहुत तेजी से बारिश एक साथ हो जाती है, अथवा टेम्परेचर बहुत एकदम से बढ़ जाता है, कभी हवा तूफान आते हैं, तो चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारी खेती बाड़ी, हमारा बिजनेस हो, हम इन सब में इन द्रुतगामी घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी, हमें अडॉप्टेशन करना होगा, और हम ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्थानीय लेवल पे कैसे उनमें हमारा सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है। चाहे हम जल संरक्षण से स्टार्ट करें, या हम एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट करें, ग्रीन एनर्जी के उपयोग से करें, सोलार एनर्जी का यूज करें, साइकिल का उपयोग करें, और हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिससे हम जल संरक्षण कर सकें, वायु प्रदूषण को बचा सकें, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कर सकें। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया। मिशन लाइफ में 7 थीम दी गई हैं, जिसमें खासतौर पर वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात है, जल संरक्षण की बात है, ठोस अपशिष्ट कम जनरेट करने की बात है, किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट इत्यादि कम से कम हम उपयोग कर सकें, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना है। इन सब को करके हम अपने देश प्रदेश और हमारी कॉलोनी इत्यादि को पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं, और इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों में कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनको कम किया जाए, उसमें हमारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, ये एक विशेष कार्यक्रम, स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए। निश्चित ही हमें आशा है और विश्वास है कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम के मार्फत अपने आप को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तैयार करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे। हमेशा लेने की प्रवृत्ति छोड़कर देने की प्रवृत्ति अपनाएंगे, यही हमारे इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है, सोच है, विचार है।
2: भैया, अब आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे को दो और कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को। अब आगे बढ़त है, बात पर्यावरण की हो रही है और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत की भी हम बात कर रहे हैं। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ो भाव।

हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जी हाँ, जो गीत है फिल्म बूंद जो बन गई मोती, स्वर मुकेश और बोल आप सुन रहे हैं आनंद ले। एको पसंद करो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

ये कौन चित्रकार है भैया? प्रकृति में जो चित्रकारी हमने देख रही है, देख रहे हैं, जाको सवारबे की जरूरत है, सजावे की जरूरत है, बनावे की जरूरत है। तभी तो हम कहते हैं ना कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और जब पर्यावरण सुरक्षित रहे थे, संवर्धित रहे थे, बढ़ थे आगे, स्वच्छता रहे थे, तो मन कहन लगा थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। भैया जो गीत हम आपके लाने सुनवा रहे हैं, जा गीत के लाने पसंद करो है रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबिता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, और फिल्म को नाम है मन की आंखें, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: त्रिपुरा के पटुआ शरीर के डोले मनुआ कि हियारा में उठते हिलो।
1: भैया गांव की बात करी जाए, पर्यावरण की बात करी जाए, तो जगीत में जो दर्शन हो रहे हैं, जगीत में जो आप सुन रहे हैं, वर्णन सुन रहे हैं, वो ही सब आपके लाने आज जमीन पे उतार के रखने हैं, बनाए रखने हैं। कैसे कि गांव में अगर हरियाली है, खुशहाली है, तो पूरे देश में हरियाली खुशहाली रहेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल गांव को है। हम सब गांव के लोगों के लाने भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, खेतों में, सब में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने हैं, पर्यावरण को बनाए रखने हैं। सुनत जो गीत आनंद लेते हैं, फिल्म गोदान को गीत है, गांव है मोहम्मद रफी ने।

तो भैया जे थे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत के आपके पसंद करे भय गीत, और हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने पसंद के गीत सुनबो चाह रहे हैं तो हमें चिट्ठी लिख देवे। हमारा पतो है ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002। संगी संगे भैया फिल्म को नाम अपनो पूरो पतो साफ साफ अक्षरों में जरूर लिख दो तो हम आपके लाने आगे भी गीत जरूर सुनवे हैं। चला चलत एक बात हम आपको बता देवे कि अब खरीफ की फसलों की बुआई को टेम पास आ गयो है तो उन्नत किस्में जो हैं सोयाबीन की बे हो चाहे धान की हो उन सब की व्यवस्था करके रखें। किसान भाइयों ने धान की नर्सरी डालबे को काम शुरू कर दो है तो बाकी लाने भी बड़ी प्राथमिकता से करें। और रहो सवाल सोयाबीन को तो सोयाबीन में ध्यान रखने हैं कि हमें कम समय अवधि वाली और कम पानी वाली किस्मों को चुनाव करने हैं। और सोयाबीन को बीज जब खरीदें तो जा बात को ध्यान रखें कि बिल पक्को जरूर ले लें और जो प्रमाणित जातियां हैं वे ही खरीदें और ऐसी जगह से खरीदें जहां से आपके लाने पक्को बिल मिले, है ना। और बीज को अंकुरण परीक्षण तो हमें करके देखने ही है जी। कछु बातें हैं जो हमें आपसे और भी करने हैं थी, मनोटेम है नहीं है, समय को अभाव होवे कारण अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिर कोई और कार्यक्रम में मिले तो आपके लाने पूरी जानकारी दे हैं। तब तक के लाने स्वीकार करो मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम।

0: ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद भरत खेड़ा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑन मेजर रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर द ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमईज। इंटरव्यूअर इज अर्जुन जे चौधरी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
4: It's a matter of pleasure to be here with you today.
3: And the reason why we are having this special discussion on MSME

एक बार फिर मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। 8:45 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते

ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान

0: सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण की भूल, चित्रगुप्त की

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में ढाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद्र प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक

अनंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अक्षरा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

0: कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।
1: वर्राटे वाला।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रही और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतनधन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते। ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की।

टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल

रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।